0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੇਬ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਟੀਆਰਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक

0: विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेब 347.673 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं ज्ञान अमृत।

हे परमात्मा, तेरा शुक्र है हर साह लई, हर सवेर लई, हर उस पल दे लई जिथे तू मेरे नाल सी, अते हर उस पल लई जिथे तू मैनू संभालिया। तेरी मेहर दे नाल ही सब कुछ संभव है।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया, जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्रीराम दुल्हा होंगे, वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

ख्वाब शोर करते हैं तो करने दो, ख्वाबों में भी तो खुश रहा जा सकता है। गम नहीं गर कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई, उम्मीदों में भी तो कभी जिया जा सकता है। सोनी सवेर प्रोग्राम सुनने वालियां दी खिदमत विच पूजा हांडा दी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल ते अदाब। जी हाँ, एक नवी सवेर, नवा दिन, बहुत सारिया नवीं उम्मीदां ते नाल ख्वाब लैके तुहाडे तक आ गया है। ते ए दिन ते ए उम्मीदां तां ही पूरियां होणगियां जदों तुसीं इस दिन दी शुरुआत एक वधिया तरीके दे नाल करोगे ते उन्हां उम्मीदां नूं पूरा करन दे लई मेहनता करोगे, एफर्ट्स करोगे, कोशिशां करोगे। ते इस दे लई तुसीं सारियां ने तैयार हो जाणा ते तुहाडे मनोरंजन दा ख्याल रखण दे लई तुहाडे लई जानकारियां दी डोज़ लै के असीं रोज़ हाज़िर हो जांदे आ सवेरे 7:02 तों लै के 8 बजे तक। ते इस सिलसिले तहत अज फिर एक नवी सवेर दे नाल, एक नवे दिन दे नाल, नवीं जानकारियां दे सिलसिले दे नाल मैं हाजिर हुई हाँ जी। दोस्तों, अज 14 जून है, अज जन्मदिन है बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल का। जी हाँ, अपनी मिठी जी प्यारी जी आवाज़ के नाल युवावां दे दिल ते राज करन वाले जुबिन नौटियाल, जिन्हां दे गाए सिर्फ बॉलीवुड हिंदी गीत ही नहीं बल्कि उन्हां दे गाइयां भगती रचनावां भी जड़ियां ओह मन नूं सकून दिंदियां ने, दिल दे हरेक कोने तक पहुँच जांदियां ने। उन्हें लखां स्रोतियां दे दिलां दे विच अपनी एक खास थां बनाई है। रातां लंबियां, लुट गए, तुम ही आना, हम नवा मेरे वर्गे बेहद लोकप्रिय गीत उन्हां दी आवाज़ दा जादू बयान करदे ने। ते अज दे इस खास दिन ते असीं जुबिन नौटियाल नूं जन्मदिन दीआं बहुत बहुत मुबारकां दिंदे हां। ते कुछ होर उन्हां बारे तुहाडे नाल जानकारी सांझी करांगे, पर उन्हां दी इक मिठी जी प्यारी जी आवाज़ दे विच प्रोग्राम दी शुरुआत दे विच गीत सुन लैंदे हां।

प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2014 में फिल्म सोनाली केबल के गीत एक मुलाकात नाल की। इस तो बाद बजरंगी भाईजान के गीत जिंदगी कुछ तो बता ने उन्होंने वड्डी पछाण दवाई। अज वो बॉलीवुड के सब तो लोकप्रिय प्लेबैक गायकों में शुमार किए जाते हैं। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड के उन्होंने अपकमिंग मेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर 2015 के लिए अवार्ड मिलिया। इस तरह आइफा अवार्ड तहत बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए रातां लंबियां 2022 के उन्होंने ना जड़ाया वो अवार्ड मिलिया। अपनी रूहानी ते दिल नू छू लैण वाली आवाज़ करके जोबिन नटियाल दे संगीत प्रेमियों के दिलों के एक खास थां बनाई है। अज उन्हां दे

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: ਖਰਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੋ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ,
2: ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇ 15,000, ਸਬਜ਼ੀਓ ਕੇ 2,000
1: ਔਰ ਲਾਈਟ ਬਿਲ ਕੇ
2: ਅਬ 0 ਰੁਪਏ ਕੈਸੇ ਦੂੰ।
1: ਓਹੋ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਥੀ, ਅਬ ਤੋ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਜੋ 4,000 ਬਚੇ ਹੈ ਉਸਸੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ।
2: ਪੱਕਾ।
3: ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुँचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो

0: स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, या ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल x@AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी

0: लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
1: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
2: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है।

0: आज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये

0: अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुँचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

0: संभव हो सकता है। भारत ने बीती रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला च 3 मैचों की एक रोजा लड़ी दे पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकटों नाल हराया। भारत ने 22 ओवर 5 गेंदों में 195 दौड़ों का टीचा प्राप्त कर लिया। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुनिया गया। भारत के अफगानिस्तान विचकार दूजा एक रोजा मैच 17 जून को लखनऊ च खेडिया जाएगा। औरतों के ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत का पहला मैच अज पाकिस्तान नाल होगा। ए ग्रुप ए मैच बर्मिंगम के एस वेस्टन विखे भारतीय समय मुताबक शामी 7 बजे खेडा जाएगा। तो आखिर च खास खबर एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नीस विखे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल खेतरी ते आलमी मुद्दों ते दुवली गलबात ते इंडिया इनोवेट का उद्घाटन करेंगे। इसरो मुखी वी नारायणन ने कहा भारतीय पुलाड खोज संगठन चंद्रमा ते 200 दिनों लिए काम करन च समर्थ लैंडर विकसित कर रहा है। भारत ने धर्मशाला च 3 मैचों की एक रोजा क्रिकेट लड़ी के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकटों नाल हराया। औरतों के ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत का पहला मैच अज बर्मिंगम च पाकिस्तान नाल। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंदा है। प्रदेशक खबरों का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर 1:10 ते। नमस्कार।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तो
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवां?
2: एक लिंक भेज आए हुणे प्रोसेसिंग लई।
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल चो ड्रग्स मिले हन।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
0: तां पैसे गवाओगे। आरबीआई कहिंदा है
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।
5: मीडिया वेब 343.6 मीटर 873 किलो हर्ट से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण जूलियस गोल्ड के साथियों के गाए मसीही भजन सरवण करते हैं।

0: आता है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 347.6 मीटर या 873 किलो हर्ट से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 10 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नीस विखे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल खेतरी अते आलमी मुद्दे दुवली गलबात अते इंडिया इनोवेट्स का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो मुखी वी नारायणन ने कहा भारतीय पुलाड़ खोज संगठन चंद्रमा से 200 दिनों लई काम करने विच समर्थ लैंडर विकसित कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया ईरान नाल जंग खत्म करने लई अज एक समझौते ते दस्तखत किए जाने की उम्मीद। इस तो बाद होरमुज़ पनजोड़ सारिया लई खोल दिता जाएगा। आयुष मंत्रालय वालों अज मुरारजी देसाई कौमी योग संस्थान अते हैबिल्डी के सहयोग नाल एक आलमी ऑनलाइन योग प्रोग्राम का आयोजन 130 देशों ने लिया हिस्सा। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा है कि पंजाब विचों नशियां दे मुकम्मल खात्मे लई लोगों का योगदान अते सरकार ते समाज दरमियान तालमेल बेहद जरूरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरकार की वचनबद्धता दोहराया क्या व्यापारी भाईचारे दरपेश छोटिया समस्यावां तुरंत अते प्रभावशाली ढंग नाल हल किया जाएगा। कल गुरदासपुर दियां तीन म्यूनसीपल कौंसल दीनानगर कादियां अते गुरदासपुर अते होशियारपुर के शाम 84 विच होईयां चोणां अमन नाल मुकम्मल नतीजे ऐलाने गए। पंजाब सरकार ने पटियाला अते लुधियाना नगर निगमां दे कमिश्नरां दे तबादले समेत 3 IAS अते 4 PCS अधिकारियां दियां बदलियां कर दित्तियां ने। भारत ने धर्मशाला विच 3 मैचों की एक रोज़ा क्रिकेट लड़ी दे पहले मैच विच अफगानिस्तान नू 7 विकटां नाल हराया अते औरतां दे ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप च भारत दा पहला मैच अज बर्मिंघम च पाकिस्तान नाल। ए सी हुण तक दियां मुख खबरां।
3: एक विशेष सूचना आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया

0: श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं कुलदीप सिंह बोलता जी, पटना दी खुरद जिला लुधियाना, 31 साल पुराना पोस्ट।
0: जी कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
1: हाँ जी, थोड़ा भी बहुत स्वागत, बहुत
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। हुण तुसीं दस्सो कि तुहाडी याद दे विच कोई ऐसा मुहावरा, कहानी जां कोई मज़ेदार गल जिहड़ी कि चार दे नाल जुड़ी होवे, चार अंक दे नाल।
1: मुहावरा ये आपां काम पहले ही कर लेना चाहिए जी, जल्दबाजी नहीं करनी
0: नहीं, इहदे विच चार दा जिक्र तां नहीं होया,
1: चाहिए।
0: देख
1: चार दिनों
0: लो।
1: की जिंदगी
0: हाँ, फिर
1: है जी,
0: हनेरी रात।
1: रखा ही दिंदा जी, 4 दिनों की जिंदगी है जी,
0: ते होर कोई चार दे
1: परमात्मा
0: नाल
1: का नाम
0: जुड़िया,
1: लै लो जी।
0: चार दे नाल जुड़िया होर कोई तुहानू केड़ा मुहावरा याद है जी?
1: मैंने थोड़ा तो दसता जी, 4 दिनों की जिंदगी
0: अच्छा, चार दिन दी जिंदगी है।
1: रब
0: हाँ, चार दिन दी जिंदगी है ना, आम गया जाता है।
1: लवो
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है जी। कुलदीप जी, हुण गीत दसो, केड़ा सुनोगे?
1: है जी, जमा जमा
0: ये
1: बीती रात
0: खूबसूरत
1: है
0: समा,
1: जिंदगी,
0: बिल्कुल।
1: तो कहा
0: आर डी वर्मन ते मोहम्मद रफी दी आवाज़ां दे विच, शान फिल्म दे विच गीत तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।
1: धन्यवाद जी।

0: तेरे चेहरे में वो जादू है, किशोर कुमार दी आवाज़
1: जाना
0: दे विच धर्मात्मा फिल्म दा गीत तुहानू सुना रहे हैं। शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होने ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होने वाली पंजाबी खबरों का प्रसारण रोज़

country? हेलो जी, माफ करना जी, थोड़ी आवाज़ साढ़े तक नहीं पहुंच रही, सानू बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा तुसी की कह रहे हो जी। दोस्तों, ये फोन लाइन दी गड़बड़ दे कारण तुहाडा ते साडा जिहड़ा फोन राही गलबात नहीं हो पा रही, पर हाँ, गीतां दे राही गलबात असी बिल्कुल इसे तरह तुहाडे तक कर रहे हाँ। ते गीत हुण अगला तुहानू त्रिदेव फिल्म दे विचों सुना रहे हाँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्वभर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मॉनसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: तै सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक ही कर रहे हो अंकल?
1: कुछ नहीं बेटा, कूड़ा सुट रहे हैं।
0: पार्क विच कूड़ा सुट रहे हो? तुसी नहीं चाहते कि असी पार्क विच खेड सकिए? जे असी खेडांगे मल्लांगे नहीं तो साडा विकास किवें होएगा? पार्कां विच गंदगी फैला के साडे विकास नूं ना रोको। साफ वातावरण च खुद भी जियो ते सानू भी जीन दियो।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ।

जलालाबाद पश्चिमी तो सुरेश पूनम, विशाल प्रिया दिशानी निमित आहूजा, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, सुखा सिद्धू, अभी सिद्धू, सतिंदर सिद्धू, नवनीत सिद्धू, खुशी सिद्धू ते सिद्धू परिवार सारा, पिंड कंध वाला, हाजिर खां, जिला फाजिलका तो हरभजन सिंह ते परिवार, पिंड बसोली तो सूबेदार साधु सिंह भट्टी, शकीला भट्टी, कुलवंत, टीनू भट्टी, बसोली वाला ते पूरा ही बसोली परिवार, फतेहबाद हरियाणा पुरानी तहसील चौक तो इंद्रपाल, बिट्टू, चंचल, आंचलपुरी, गगन, प्रिंस, जीवन सिंह ते सारा ही बुक परिवार, गंगानगर तो डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पिंड रायन, जिला श्री गंगानगर तो महेंद्र रोयला, रंजीत, मनी, रूबी, हैप्पी, किरण, सीमू रोयला, ननियोला, अंबाला तो ते सारी रोयला परिवार, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर तो जलालाबाद पश्चिमी तो ए ने निमित ते परिवार, रघुनाथ पुरा, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान तो लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित ते खुशी गोस्वामी, कृष्णा रोड पाक दिल्ली तो मिंटू दीवाना, रजिंदर सिंह ओबराय, कोका पिलाई तो उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष ते नंदनी जंगेल। आओ सुनते हैं

प्रोग्राम दा अगला गीत आवाज़ है टाइसन संधु होरां दी, प्रोग्राम है तमक जलंधर पैंदी। असीं रोज़ाना थोड़े लिए प्रोग्राम पेश करते हाँ, समा हुंदा है 11:05 लैके ते 12 बजे तक, ते इस गीत की फरमाइश है सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्य आरव खुराना, एस के पप्पी, MLB रोड ग्वालियर तो, मेरठ कैंटो दिग्दर्शन ते कविता गौड़। सुनते हैं गीत आवाज़ है टाइसन संधू दी।

0: ఏసీ గీత వాసి టైసన్ సందుది ఏసీ ప్రోగ్రామ్ తమక్ చిలందర పంది ఐసీ రోజానా ప్రోగ్రామ్ లేకి ఉన్నాయి ఇస్తా సమా ఉందా గ్యారా వచ్చి పంచ మినిట్ లేకి తే బారా వచ్చి తక్ రోజానా సి థోడీ సేవా విచ్ ప్రోగ్రామ్ లేకి ఉన్నాయా జో కి పంజాబీ గీతాం తే ఆధారిత ఉందా ఆర్ వాట్సాప్ ఆధారిత ఉందా ఆర్ వాట్సాప్ సాడా సి నంబర్ వార్ వార్ దాస్తే ఆ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 94-600-5576 ਯਾਨੀ 9465536077 ਕਈ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत

0: राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: सत श्री अकाल पंजाबियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
3: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पाएगा?
2: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
3: अप्लाई किवें करिए?
2: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राहीं बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 0112311242 ते संपर्क करो।
3: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।

0: जय हिंद।
1: प्रतिभा दे वणजारे बच्चे, सूरज चन्न सितारे बच्चे, और इन्हां चन्न सितारे होण हार प्यारे बच्चों का मनपसंद प्रोग्राम लैके उन्हां दे रेडियो सैट उपर हाजिर हो चुके ने सुखदीप और गुरप्रीत। एतवार की दोपहर नूं होर ज़्यादा खूबसूरत बनाउण दी, और वैसे गुरप्रीत कुदरत थोड़ी ते मेहरबान होई है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, कुदरत मेहरबान हुई है, बिल्कुल मेहरबान हुई है। लेकिन सुखदीप भैया, कुदरत की इस दयालता वाल देखदिया होया तुसी इंट्रोडक्शन दे विच मेरा नाम लैणा, मेरी इंट्रोडक्शन कराउणा तां भुल ही गए। इन्ने ज़्यादा खुश हो गए कि कुदरत बारे गलबात जिहड़ी आ शुरू कर दित्ती है, क्योंकि सच्ची ही इन्नी ज़्यादा एक्साइटमेंट सारयां दे मनां दे विच भरी हुई है। सारे सोच विचार रहे ने कि मौसम शुक्र है इदां दा होया, लेकिन किते ना किते थोड़ी थोड़ी गर्मी जरूर ते जरूर पै रही है। हुण कंटिन्यू कंटिन्यू सुखदीप भैया, तुहाडी वारी जिहड़ी आ ओह जरूर चल रही है।
1: गुरप्रीत, प्यारे बच्चे जानते ही ने कि अक्सर करके ना उन्हां दे दो प्यारे दोस्त रेडियो दे उत्ते बाल जगत प्रोग्राम एतवार नूं लैके आउंदे ने, ओह सुखदीप और गुरप्रीत ही हुंदे ने ज्यादातर। कदे कदे हरप्रीत दीदी आउंदे ने हाजिरी लगवाउण दे लई। सो फिर मैं कहा कि क्यों ना थोड़ा जिहा कोई डिफरेंट एंगल दे नाल अज अपनी इंट्रो की जाए। डिफरेंट वाले एंगल तो ना अजकल प्यारे बच्चे चलते पए ने। क्यों चलते पए ने? छुट्टियां ने, आनंद मंगल हुंदा पिया है, और कुछ बच्चे तो देखो जी वाकई वधिया वाला काम करते पे ने। सवेरे उठते ने, ग्राउंड जाते ने, रनिंग करते ने, फुटबॉल खेडते ने, क्रिकेट खेडते ने, साइकिल, स्विमिंग, म्यूजिक की क्लास भी लगा लेंदे ने शामी, और इदां दे होर केड़े केड़े बच्चे ने उन्हां दे हाथ सानू खड़े नजर आउंदे ने। बहुत सारे काम इस तरह के करते पे ने।
0: बिल्कुल, और जदों असीं इहो जिही एक्टिविटीज़ की गल करते हैं तो सच्ची ही शाबाशी दुनिया की बिल्कुल भी नहीं चाहिए होंगी उन्हां प्यारे प्यारे बच्चों। अपनी शाबाशी खुद शाम नूं जदों शीशे के सामने खड़े होंगे होणगे तो बहुत ज़्यादा माण महसूस करते होणगे कि जेकर असीं स्कूल नहीं भी जा रहे तो भी साढ़े दिन के दो तीन चार घंटे इन्ने ज़्यादा वधिया सी, जिस करके सारा दिन एनर्जी दे नाल भरे रहे ते अगले दिन की प्लैनिंग भी उन्हां दे ज़हन दे विच हमेशा चलती रहिंदी है, और बहुत ही खुश महसूस करते हैं। किसी भी तारीफ की कदे भी एक्सपैक्टेशन नहीं करते, क्योंकि वह सैल्फ रियलाइजेशन करते हैं और अपनी सैल्फ प्लानिंग करते हैं, तो नाल ही नाल सैल्फ प्रेज करना सिख जांदे ने।
1: लो जी प्यारे बच्चे, पता की कहिंदे ने गुरप्रीत, मन ही मन ये कहिंदे ने कि देखो सानू बार बार कहोगे ना तो फिर असी कई बार चिढ़ जाने, फिर असी गल नहीं मानते। और दादा दादी पेरेंट्स नू भी असी यही अपील करांगे कि बच्चियां नू ना थोड़ा जिहा प्यार दे नाल जदों तुसी टैकल करदे हो ना कि ना मेरा पुत्तर ये मोबाइल फोन ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है थोड़ी देर कर ला फिर छड़ दें, तो प्यारे बच्चे गल मान जांदे ने। फिर पता की कहिंदे ने कि दादी मैं की करां, मैनू कोई काम दसो। तो फिर वो दादी जी कहिंदे ने कि अच्छा बेटा आ लाया ओ लाया या इत्थों आ चुक के उधर रख दे। तो ये की हों कि प्यारे बच्चों की अपने पेरेंट्स के नाल ग्रैंड पेरेंट्स के नाल एक खूबसूरत वाली बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है, और उन्होंने बड़िया तजुर्बे वाली चीज़ा उन्होंने तो सीखण नूं मिलदियां ने।
0: और एक होर बहुत खूबसूरत जी चीज़ तुहाडी गल तो सुखदीप ज़हन दे विच आ रही है, दिमाग दे विच आ रही है, वो की है कि जदों बच्चे नूं कहा जाए कि चल आ कर चल आ कर, तो वह बच्चा किते ना किते अपने मन दे विच सोचण विचारण लग जांदा है कि नहीं मैं वेला रह के ज़्यादा खुश हाँ। लेकिन जदों उन्हूं कहा जांदा है कि चलो आ करिए आओ आ करिए, तो ग्रैंड पेरेंट्स बाखूबी कर सकते ने बच्चों के नाल, चाहे फिर वह गार्डनिंग होवे, चाहे कहानियां जिहड़ियां ने सुनाउण दी गल होवे, या रसोई दे विच साफ सफाई की गल होवे, बैड नूं मेनटेन करके रखने की गल हो, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी है, जो बच्चों पूरे जज्बे के नाल पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स या वे कहें कि आओ हूँ आ करिए, बच्चों चो एनर्जी लैवल सच्चियों बहुत ज़्यादा वध जाता जो उन्होंने गाइड किया जाता है कि आ करो वो करो, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन जड़िया ने ना वो स्कूल दे विच भी तो इदा ही फॉलो करते हैं ना।
1: तो लो जी सानू भी इंस्ट्रक्शन आती पई है कंप्यूटर जी वालों के प्यारे बच्चों के नाल बहुत सारिया गलों की सांझ तुसी पवा चुके हो सुखदीप और गुरप्रीत। हुण प्यारे बच्चों कोई खूबसूरत जिहा गाणा भी सुना दो। लो प्यारे बच्चों, ये खूबसूरत गाणा आ रहा है तुहाडे रेडियो सैट उपर।

0: आंसू नहीं है बैरे की, करी खिलौनों की बरमाश, माँ की ममता माँ का प्यार।
1: बाल जगत दे वेड़े दे विच अपनियां खूबसूरत हाजरियां लगवाउंदे पए ने प्यारे बच्चो, और ये काम तुसीं वी कर सकदे हो। किसी शांत एकांत रूम दे विच अपनी खूबसूरत वाली आवाज़, जिस दे विच कोई कविता, कोई कहानी, कोई लोक गीत

0: the surfers. Hope we can for another ride. She can distract us from our worries. She can lure and hypnotize with the rhythm, her movement and her beauty in our eyes. She is a force that cannot be reckoned with, a power to rival. She is a lovely, sweet seductress who we long to settle near. There are no words that truly tell the splendor of her face or recreate that feeling of such a warm and peaceful place. The oceans is a lovely gift. She is God's great masterpiece, a miracle we can behold that give us a reason to believe. So my dear friends, let's stop being ignorant. If we continue to harm, there will surely be an end. Let us all join together to help our oceans. Let's lend our hands and save for the future. Thank you. Have a nice day.
1: जी देखो, आर्ट दी हर फॉर्म सानू बहुत कुछ सिखाउंदी है, चाहे असी गाणियां दी गल कर लईए, कविता कहानियां दी गल कर लईए, फिल्मां दे विच वी कई बार इहो जे विषय चुने जांदे ने, जदों असी नाटक देखदे आ उहनां दे विच वी हर चीज़ दे विच वक्खरे वक्खरे विषय चुने जांदे ने, और हमेशा ते हमेशा सानू कुछ ना कुछ सिक्ख्या मिलदी है, और जे कोई इंसान कुछ गलत वी कर रिहा हुंदा है तां उस तों वी सानू सिक्ख्या सेध ही मिलदी है कि असी इह काम नहीं करना। सो इसे तरीके जदों असी इक आर्ट दी बहुत ही वधिया वनगी दी गल करदे आ, उह है जी कहानी। और कहानी दे जरिए तुहानू दस्सिया कि किवें असीं अपने आप नूं उस करैक्टर दे हिसाब दे नाल ढाल के अपनी जिंदगी दे विच कुछ बदलाव लैके आ सकदे हां। सो असीं वी सोचिया विचारिया कि क्यों ना तुहानू इक कहानी सुनाई जावे, इक सिख्यादायक कहानी। आओ सारे रल मिल के सुनदे आं कहानी सुखदीप हुणा वल्लों।
2: एक वार एक मुंडा जिसका नाम राजू सी, उसनू अपने जन्मदिन ते बहुत सारे तोहफे मिले। इन्हां विच तस्वीरां वाले कार्ड, भंभीरियां, कारां, घोड़े आदि बहुत कुछ सन। पर सब तो वधिया तोहफा उसनू अपने चाचे वालों दिता पंछी फड़न वाला जाल ही लग्या। एक फ्रेम नाल छोटी जी तख्ती जोड़ के इस दे पिछले पासे जाल नू खिच के लाया होया सी। राजू इसनू देख के बहुत खुश सी। वह खुशी नाल दौड़दा होया अपनी माँ नू तोहफा दिखाउण लई गया। उसकी माँ नू यह तोहफा पसंद ना आया। वह कहण लगी, राजू यह कोई वधिया खिडौना नहीं है, तू निक्के निक्के पंछियां दा की करेगा, तू होरना नू क्यों दुखी करना चाहुंदा है। पर राजू जिद करन लगा, मैं उना नू पिंजरे च बंद करके रखांगा ते उना नू दाना भी पाया करांगा। अगले दिन राजू ने तख्ती ते कुछ दाने खिलारे ते बाग विच जाके जाल ला दिता। आप वो कुछ चिर उत्थे ही खड़ा रहा तां कि पंछियां नू जाल विच फसदा देख सके, पर पंछी उस कोलों डरदियां जाल दे नेड़े ही ना आए। कुछ चिर उड़ीक करन तो बाद वह दोपहर दी रोटी खाण घर आ गया। जदों वह वापस बाग विच गया तो उसने देखा कि जाल थले डिग्गिया पिया सी ते निक्का जिहा पंछी जाल अंदर फसिया होया सी। राजू बहुत खुश होया, वह पंछी नू फड़ के घर लै आया। घर आके अपनी मम्मी नू कहण लगा,
3: देखो मम्मी, मैं एक पंछी फड़ लिया है, ए जरूर बुलबुल ही होवेगी।
2: उसकी माँ कहन लगी, ए ता गौन वाला पंछी है, इसनु तंग ना करी, इसनु छाड़ दे।
3: नहीं, मैं इसनु पिंजरे च बंद करके चोगा भी पावांगा ते इसका पूरा ख्याल भी रखांगा।
2: राजू ने उसनु पिंजरे विच बंद कर देता अते दो दिन उसनु दाना पानी पौंदा रहा ते पिंजरा भी साफ करदा रहा। पर तीसरे दिन वो अपनी जिम्मेवारी भुल गया। उसने ना तो पंछी का पानी ही बदलिया अते ना ही पिंजरे नू साफ कीता। फिर उसकी माँ ने कहा, देख तू इस निक्के जे पंछी बारे बिल्कुल भुल गया है, मेरा ख्याल है कि चंगा होवे जे इसनू तू आजाद कर देवे। राजू बोलिया,
3: नहीं, मैं अगे तो नहीं भुलांगा, मैं हुणे इसनू ताजा पानी पियांदा हां ते पिंजरा भी साफ करदा हां।
2: राजू पिंजरे च हाथ पाके सफाई करन लगा पर पंछी डर गया। उसदे फड़फड़ाउंदे हुए खंभ पिंजरे नाल वज्जण लगे।

0: एसी प्रोग्राम बाल जगत।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मैनू दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sci.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: इस समय दिन का 1 बज रहा है। आप सुन रहे हैं समाचार हिंदी विच दिल्ली केंद्र तो।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद

0: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: ਹੁਣ ਫੋਲਾਂ ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਪਾਇਆ
0: ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ।

बरसात की रात फिल्म का गीत सी। सुनते हैं अगला गीत, फिल्म है चंपा कली, आवाज़ा ने लता मंगेशकर ते हेमंत कुमार दियाँ।

फिल्म चंपा कली दा गीत से लता मंगेशकर ते हेमंत कुमार दा गाया हुआ। अगला गीत है समन कल्याणपुर ते मोहम्मद रफी दा गाया। फिल्म है जहां आरा।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में मीटिंगों के साथ यूरोप का अपना दौरा शुरू कर दिया है। जनाब मोदी अब से कुछ देर बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं। आज सदर मैक्रों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। झारखंड में बिजली गिरने के अलग अलग वाक़यात में 7 अफराद की मौत हुई है। जनूब मगरबी मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक के बाज़ हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जनूबी छत्तीसगढ़ में पहुंचने का इम्कान है। कोलंबो में 5,000 से ज़्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भरतनाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। और क्रिकेट में ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह अब से कुछ देर बाद नीस में भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करने वाले हैं। ये अहम तकरीब भारत और फ्रांस के इख्तरा के साल के तहत हो रही है और इसमें 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप इदारे, आलमी सरमायाकार, टेक्नोलॉजी के माहिरीन और कारोबारी अफराद शिरकत कर रहे हैं, जिसमें भारत के तेज़ी के साथ फरोग पाते इख्तराई इकोनिज़ाम की अक्कासी की जाएगी।

0: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर मैखों दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर इमानुएल मैखों मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब के दौरान जिद्दत तराजी, सनतकारी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में भारत की बढ़ती हुई ताकत का मुजाहरा किए जाने का इम्कान है। बाद में दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और टेक्नोलॉजी, तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी तआवुन में मजीद इजाफा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दो तरफा बातचीत और सदर मैखों की जानिब से एक जोहराने के इनेकाद के बाद वजीर आजम मोदी अपने दौरे के अगले मरहले के तहत स्लोवाकिया रवाना हो जाएंगे। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में अगले हफ्ते G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक आला ओहदेदार के मुताबिक इस बातचीत में मुआशी तरक्की, सप्लाई निज़ाम, मसनू जहानत, सरमायाकारी से मुतालिक साझेदारी और आलमी सिक्योरिटी को लाहिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज किए जाने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मेयारी हिफ्ज़ाने सेहत को और ज़्यादा कम खर्च और ज़्यादा लोगों तक बहम पहुँचाने के लिए भरपूर अंदाज से काम किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को उस वक्त बड़े फ़ख्र का एहसास होता है जब भारत को दुनिया के हिफ्ज़ाने सेहत के सबसे बड़े प्रोग्राम आयुष्मान भारत के मुल्क के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत कमज़ोर तबकों के लोगों को आला मेयार के हिफ्ज़ान सेहत सहूलियात फराहम की जाती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना जैसी कोशिशों से दवाएं कम कीमत की हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सरकार एक सेहतमंद भारत की तामीर की खातिर अब तक की पेशरफ्त को बरकरार रखते हुए ये सिलसिला आगे बढ़ाएगी। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सेहतमंद शहरी एक मजबूत मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत, PMJAY और आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर डिजिटल हिफ्जान सेहत के मुख्तलिफ इकदामात तक हिफ्जान सेहत की मेयारी सहूलियात अब पहले से कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के महकमे के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान भारत के हिफ्जान सेहत के शोबे में बड़ी तब्दीली आई है और सभी शहरियों के लिए कम खर्च और काबिल रसाई हिफ्जान सेहत को यकीनी बनाने पर खास तवज्जो दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गडकरी ने कहा कि हिफ्जान सेहत से मुतालिक हुकूमत के सरकर्दा इकदामात से मुल्क के सेहत के बुनियादी ढांचे को काफ़ी तकवीत मिली है और एक स्वस्थ भारत के नज़रिए को फ़रोग हासिल हुआ है। कॉमर्स और सनत के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने भी जोर देकर कहा है कि भारत आज हिफ्जान सेहत के दुनिया के कई सबसे बड़े इकदामात में कायदाना रोल अदा कर रहा है। अकलियतों के उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल में मुल्क में अकलियती बिरादरियों की ज़िंदगी, मेयार और मजमूई सूरत हाल में नुमाया सुधार आया है। एक कौमी रोजनामे के साथ इंटरव्यू में जनाब रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ सबका विकास के नज़रिए की बदौलत इस बात को यकीनी बनाया जा सका है कि तरक्की के फ़ायदे मुआशरे के हर तबके तक पहुँचें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिकायत पर अमेरिका में कायम एक तंजीम और 6 दीगर इदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस शिकायत में गैर मुल्की डेबिट कार्ड्स के नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की फंड्स को गैर कानूनी तरीके से बरूएकार लाने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसमें मुल्क के बाई बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर इलाके भी शामिल हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की शिकायत की बुनियाद पर बेंगलुरु की कोथनूर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक एक्ट के

0: तहत 11 जून को केस दर्ज किया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने मिलकर एक साथ रक्स का मुजाहरा किया, जो एक तारीखी सकाफती संगे मील है, और इस तरह उन्होंने भरतनाट्यम के सबसे बड़े रक्स प्रोग्राम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज तारीख रकम की गई। 5,000 से जायद भरतनाट्यम फनकारों ने एक साथ परफॉर्म करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम डांस क्लास का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। रंग, ताल और रिवायत के शानदार इम्तिजाज ने पूरे माहौल को एक सकाफती जश्न में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद पाया तकमील को पहुँचाने वाला ये तारीखी प्रोग्राम भारतीय क्लासिकी रक्स की आलमी मकबूलियत को नई बुलंदियों तक ले गया है। इस कामयाबी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का साइटेशन भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने फनकारों और मुंतजमीन की नुमाइंदगी करते हुए हासिल किया। भारत और श्रीलंका के सकाफती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने वाला ये प्रोग्राम फन और विरासत की एक नाकाबिल फरामोश मिसाल बन गया है। अहमद मुइन फारूकी, कोलंबो।
0: झारखंड में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई। इनमें 3 खवातीन और 10 साल का एक लड़का शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक रांची में 2 अफराद की मौत हुई, जबकि गढ़वा जिले में भी 2 अफराद मारे गए। दीगर अमवात की इत्तला चित्रा, गिरिडीह और सरायकेला खरसवान जिले से मिली है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक के बकिया हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ और हिस्सों, नीज जुनूबी छत्तीसगढ़ में पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। मौसमियात महकमे के मुताबिक शुमाल मशरकी खित्ते, अंडमान निकोबार जजायर, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज तेज बारिश होने का इम्कान है। खवातीन के ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत आज ग्रुप ए में रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच बर्मिंघम में एजबेस्टन में खेला जाएगा और ये भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में मीटिंगों के साथ यूरोप का अपना दौरा शुरू कर दिया है। जनाब मोदी अब से कुछ देर बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं। आज सदर मैक्रों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। झारखंड में बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में 7 अफराद की मौत हुई है। कोलंबो में 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भरतनाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। और क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून,
3: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते। फौजी वीरो, एक बार फिर आप सब का स्वागत है। आप सुनते हैं गीत, फौजी वीरो लई प्रोग्राम जारी है। सुनते हैं गीत, फिल्म है बैजू बावरा, गायक कलाकार लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी।

0: सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है रानी रूपमती, गा कलाकार लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी।
1: अमिया हलाहल मद भरे श्वेत।

ए सी गीत, फिल्म सी रानी रूपमती। फर्स्ट जीरो अज इस प्रोग्राम से असी थोड़ी नज़र किए या कर रहे हैं गीत भारत भूषण से फिल्माए हुए।

0: ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਰੀਆ ਅਤੇ ਤਲਤ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਗੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੈ ਹਿੰਦ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में

0: पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
1: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की।

0: सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा

0: तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: ओए वाह, बधाइयां। बहुत सारी शॉपिंग।
1: हाँ, नवा मोबाइल, जीन्स, जैकेट।
2: खैर जा शहजादे, तनख्वाह तो पहला खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहला बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए। पर पार्टी देन तो नहीं बचेगा तू।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तो हड्डा।
2: अच्छा?
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
5: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
6: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेशा प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी सुनोगे मुख्तियार सिंह जफर ढाडी ते साथियों हुण दिवस विच प्रसंग 40 मुक्ते।
7: ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ, ਆਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਗਣੀ ਆਖਦਾ ਮੌਤ ਤਾਈਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ ਮਹਿਬੂਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਸਭ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ ਤੇਗ ਦੀ ਦਾ ਧਰਮ ਉਪਜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫੱਟੀ ਮੇਸ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ, ਨਾਲ ਸੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ।

प्रोग्राम चल रहे जी चिट्ठियाँ मिठियाँ। दोस्तों अज असी रेडियो के 90 साल की गल कर रहे हैं तो मैनू एक छोटी जी गल याद आई। एक समा सी जदों पिंड विच हर घर को रेडियो नहीं हुंदा सी, किसे एक घर रेडियो हुंदा सी ते शाम नू आले दुआले दे लोग भी उत्थे आके बैठते सन। कोई खबरां सुनदा, कोई गीत ते कोई सिर्फ बैठन लई आ जांदा। रेडियो ने लोगों नू सिर्फ जानकारी नहीं दित्ती सगों एक दूजे नाल जोड़िया भी है। कहिंदे ने सुरां दा साथ सी, यारां दी महफिल सी, ओ वेले होर सन, ओ गल ही

दर्शन लाल मलकीत, राजपुरा तो हरदीप सिंह, धर्मवीर जसलीन जगवीर। आओ सुनते हैं ना सभी फरमाइश ते गुरनाम भुलर दी आवाज़ अगला गीत।

प्रोग्राम चल रहा जी चिट्ठियां मिठियां। दोस्तों चिट्ठियां मिठियां दी सब तो सोहनी गल मैनू ये लगती है कि हर चिट्ठी के पिछे एक इंसान हुंदा है, एक कहानी हुंदी है ते एक एहसास हुंदा है। कोई अपने दोस्त लिए गीत दसदा है, कोई अपने परिवार लिए ते कोई सिर्फ ये दसन लिए चिट्ठी लिखते ने कि वो सब साडा प्रोग्राम सुनते हैं। जदों चिट्ठियां साढ़े को पहुँचदियां ने तो लगता है रेडियो का यह रिश्ता अज भी उन्ना ही मजबूत है जिन्ना 90 साल पहला सी। चलो जी होर इंतज़ार नहीं करावांगे, वेखदे हां अगली चिट्ठी सानू भेजी है। नई आबादी अबोर तो डिंपल सोनी, संतोष, कोमल, सोनम, बलाचौर डिस्ट्रिक्ट नवांशहर तो एकमदीप, जसपाल, रमनदीप, इंद्रजीत, जलंधर तो राहुल, बिन्नी, कमलेश, सुहाना, दक्ष, शिवा, सुरेश। आओ सुनते हैं ना सब की फरमाइश ते अगला गीत।

0: प्रोग्राम चल रहा सी जी चिट्ठियां मिठियां। दोस्तों अज दियां चिट्ठियां फरमाइशां अते गल्लां दे नाल साडा सफर इत्थे समाप्त हुंदा है। रेडियो दे 90 सालां दे इस खास सफर विच साथ देने लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। सानूं अपनी
1: 73 किलोहर्ट्ज़
0: साडी चिट्ठियां दी उडीक रहेगी। हुण मैनूं दिओ इजाज़त, फिर मिलांगे तुहाडे नवीआं चिट्ठियां दे नाल, नवीं फरमाइशां ते ढेर सारीआं गल्लां दे नाल। उदों तक लई मैं तुहाडी
1: मुख खबरां।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन नाल दुवाली गलबात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल विच देश विच सेहत संभाल नूं बेहतर ते किफायती बनाउण लई कई कदम चुके गए ने। केंद्रीय सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व खूनदाता दिवस ते लोकां नूं स्वै इच्छा नाल खूनदान करन दी अपील कीती है। जनगणना 2027 तहत पंजाब विच मकानां दे सूचीकरण ते गणना दा पहला पड़ा तय समय विच सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। पंजाब सरकार ने व्यापारियों दुकानदारों ते कारोबारी मालकां दीआं चिंतावां गलबात ते जवाबदेह शासन राहीं हल करन दा भरोसा दिता है।

0: का अभिनंदन। आज के इस अंक में व्यक्तित्व निर्माण में साहित्य की भूमिका, इस विषय पर आप सुनेंगे एक परिचर्चा। प्रतिभागी हैं डॉक्टर अनिल पांडे एवं डॉक्टर अशोक कुमार आस।
1: नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ व्यक्तित्व निर्माण में साहित्य की भूमिका विषय पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं हिंदी विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अनिल पांडे आज के इस परिचर्चा में पाठकों, साहित्य प्रेमियों और उन विशेष लोगों के कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ जो यह जानना चाहते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है। तो सर, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि साहित्य क्या वाकई किसी के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है?
2: जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नील जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज इस परिचर्चा का जो प्रारंभ किया है और मुझे मौका दिया है। मैं सबसे पहले आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वर्तमान समय जिस परिदृश्य को लेकर चल रहा है उसमें साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जितना विकास हुआ और उस विकास के साथ मूल्यों का विघटन भी हुआ है, और उन मूल्यों को विघटन को बचाने के लिए आज के व्यक्ति के पास, आज का जो जनमानस है उसके पास सबसे बड़ी जो भूमिका है वो साहित्य की होती है। क्योंकि साहित्य, जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य सबका हित करता है
1: जी,
2: जो सबका हित करेगा तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति का भी हित होगा
1: जी।
2: तो व्यक्तित्व निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, उसको लेके हम जो आज बात कर रहे हैं कि साहित्य की व्यक्तित्व को प्रभावित कैसे करता है। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा
1: जी,
2: हमें
1: जी।
2: कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, अब साहित्य है क्या, जब साहित्य निर्माण की जब बात आएगी तो दो प्रश्न और इसके बीच में से निकलते हैं कि साहित्य है क्या, जो हमें परोसा जा रहा है क्या वो साहित्य है
1: जी।
2: या 20 साल 50 साल पहले या उन युगों की बात करें जहां रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ, गीता जैसे ग्रंथ, बाइबल कुरान जैसी महाकाव्य हमारे बीच में आए उनकी बात करें
1: जी।
2: और वर्तमान की 21वीं सदी की अगर हम साहित्य की बात करें तो उनमें थोड़ा सा मूल तो मुझे अंतर लगता है कि वो साहित्य कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ साहित्य था, समाज के भीतर से निकला हुआ साहित्य था। प्रेमचंद तक आते आते भी कई बार लगता है कि साहित्य बचा हुआ था।
1: एक बात जो यहाँ एक प्रश्न बनता है वो ये कि महाभारत के बहुत सारे पात्र, उनको लेकर के बहुत सारी रचनाएं रचेंगे, क्या उन पात्रों के कुछ ऐसे बिंदु बताएंगे जो आज की जनमानसिकता को प्रभावित करता हो, आज के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता हो? क्योंकि आपने लगातार महाभारत के पात्रों के साथ मानसिक संघर्ष किया है जी।
2: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो महाभारत की बात कर रहे हैं कि महाभारत के पात्र जो है वर्तमान में आपको चारों तरफ महाभारत के पात्र दिख जाएंगे, चाहे आप वो राजनीति परिवेश ले लें, चाहे वो सामाजिक परिवेश ले लें, चाहे वो समाज का किसी भी हिस्से की बात करें वो ले लें आप। आपके बीच में आज की अगर हम राजनीति की बात करें, आज की पूरी राजनीति आप देखिए किस प्रकार से कृष्ण की जो कूटनीति थी
1: जी,
2: आप उसके आसपास घूम रही है। अगर हम बात करें दुर्योधन की बात करें, अगर हम धृतराष्ट्र की बात करें, तो आप देखिए आज की राजनीति कहीं ना कहीं उन्हीं बिंदुओं को लेके, उन्हीं पात्रों को लेके चल रही है। लेकिन समाज का कुछ हिस्सा ऐसा भी है, अगर हम परिवारों की बात करें, इस प्रकार के जो युगों में जो साहित्य हुआ है
1: जी,
2: उनका दो प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें चलती है
1: जी।
2: समाज में कहीं टूटन भी है, लेकिन उस समाज की टूटन को बचाने के लिए साहित्य अपनी भूमिका अदा भी करता है, लेकिन मात्र पढ़ने से नहीं होगा। या घर में एक पुस्तक रख ली आपने गीता और उस पर धूपबत्ती कर ली, बात उससे नहीं बनेगी। हमने उस साहित्य की गहराई में जाना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप गहराई में कूदेंगे तो कहीं ना कहीं जो आप व्यक्तित्व निर्माण की जो बात कर रहे हैं कि व्यक्ति में निखार आएगा उस चीज से,
1: बिल्कुल,
2: लेकिन निखार तब आएगा जब उसकी गहराई से जुड़ेगा।
1: एक बात जो अक्सर सुनने को मिलती है और बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं कि आपका अध्ययन भी संत साहित्य पे काफी रहा, तो संत साहित्य वर्तमान समय में किस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, विशेष करके जब हम कबीर की बात करें, जब हम रैदास की बात करें, क्या वे युवा जनमानस को प्रभावित कर पा रहे हैं?

0: क्या उनकी शिक्षाएं, उनकी धारणाएं हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो पा रही हैं?
1: देखिए डॉक्टर अनिल जी, मुझे ये लगता है कि अगर आज का समाज अगर बचा है तो उसी 800 साल पुराना जो साहित्य रचा गया, गुरुओं की वाणी जो रची गई,
0: जी
1: उसकी वजह से ही चल रहा है। वरना वर्तमान में जो जिस प्रकार का संत प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं या जो अपने आप को संत घोषित कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनसे लोग ज़्यादा जुड़ पाएंगे। और
0: जी
1: 800 सालों पहले तो कोई आपकी मीडिया भी नहीं थी, आपकी कोई एआई की भी बात नहीं उठती थी, आपके पास कोई जनसंचार के माध्यम भी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कबीर, रैदास, नानक आपके बीच में आज भी जिंदा है, तो ये मान के चलें कि उनकी वाणी जो है बहुत अहम मुद्दों को लेके उन्होंने बात उठाई होगी।
0: जी
1: और आज का जो खासकर युवा जो है लगता है कि हमें वाणी से नहीं जुड़ा, ऐसी बात नहीं है। आज वो कहीं ना कहीं जब घिर जाता है चारों तरफ से, फिर क्या उसी वाणी की तरफ आता है और उसी को पढ़कर कहीं ना कहीं रास्ते निकालने की वो कोशिश करता है।
0: एक कबीर के काव्य में जो गुरु की संकल्पना रही है और वर्तमान समय में जो गुरुजन का यथार्थ रहा है, तो कबीर किस तरह के गुरु की तलाश की बात करते हैं? वहाँ जो एक पूरी की पूरी शिष्यत्व की जो अवधारणा है और गुरु का जो कर्तव्य होना चाहिए, इसको लेकर के थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: देखिए डॉक्टर अनिल जी, जो है ये प्रश्न बड़ा गंभीर है कि गुरु परंपरा की जो बात है, भारत तो हिंदुस्तान को तो गुरु प्रधान देश कहा है,
0: जी
1: और फिर बात वही त्रेता द्वापर की आती है। द्वापर में जिस प्रकार से द्रोणाचार्य गुरु जो रहे और उनकी जो भूमिका रही, मैं उनकी भूमिका के ऊपर कोई संदेह नहीं कर रहा, वो उस समय की परिस्थितियाँ रही होंगी। लेकिन अगर गुरु है तो गुरु के लिए सभी शिष्यों का समान होना बहुत ज़रूरी है।
0: बहुत जरूरी है।
1: और गुरु के मन में भी अगर ये, हाँ वो अलग बात है कि जब उत्तराधिकारी की बात आती है, गुरु ऐसे शिष्य को चुनता है जिसमें वो सारे गुण हो जो उसको कुर्सी वो देता है,
0: जी
1: लेकिन भाव गुरु का ये होना चाहिए सभी के प्रति जो है एक समान हो। लेकिन वर्तमान जो समय है, वर्तमान में मुझे लगता है कि गुरु परंपरा ध्वस्त तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन क्षीण जरूर हुई है कहीं ना कहीं। उसका कारण ही रहा कि आज का जो गुरु है, जो हम गुरु जिस गुरु की बात कर रहे हैं, या प्राध्यापक की बात कर रहे हैं, या टीचर, या अब तो नई चीजें आ गई आपका प्रोफेसर तक की जो बात कर रहे हैं, कि आज का वर्तमान का शिक्षक अपने आप को गुरु मान ही नहीं रहा।
0: जी,
1: वो इस चीज को ये कह रहा है कि मैं मुझे सैलरी मिल रही है और मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मेरा काम सिर्फ है क्लासरूम तक सीमित है। अगर आज का टीचर अगर ये बात कह रहा है, तो मुझे लगता है कि वो भारत की गुरु परंपरा जो है वो अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रही, लेकिन खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हो सकती कोई भी चीज। आज भी ऐसे शिष्य हैं, आज भी ऐसे गुरु हैं जो अपने गुरु के लिए, जो गुरु अपने शिष्य के लिए जो है सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन वो होता तब है जब हम उस गहराई तक जाते हैं, हम समझने की बात करते हैं, तो समझने वाले भी और ना समझने वाले भी दोनों
0: यानी
1: बातें
0: यहाँ
1: चलती हैं।
0: कबीर के जो सद्गुरु की बात है, जो सच्चे गुरु की तलाश की बात है कि जिनसे सही ज्ञान मिल सके, उसके तलाश की ज़रूरत है, तो परंपरा समृद्ध है और बची हुई है। एक बात जो साहित्य जिस तरीके से व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उस पर कई बार हम विचार करते करते कविता के पास पहुंचते हैं, कहानी के पास पहुंचते हैं, उपन्यास के पास पहुंचते हैं, साहित्य की जो अनेक विधाएं हैं जैसे नाटक, संस्मरण, रिपोर्टर, इन सब में गद्य और पद्य में अगर आपसे जाना जाए तो व्यक्तित्व निर्माण की संभावनाएं किस में ज़्यादा रहती हैं, कविता में कि गद्य में?
1: देखिए साहित्य साहित्य है,
0: जी
1: साहित्य में भी हमने गद्य और पद्य जब बना दिया तो वहाँ हमने सीमाएं, दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन प्रश्न तो है अब आपका जायज है कि गद्य या पद्य जो है, अब दोनों चीजें हैं, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। एक व्यक्ति उपन्यास में अपनी रुचि रख रहा है, एक व्यक्ति कहानी या आज की नई पीढ़ी जैसे संस्मरण लिखे जा रहे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे जा रहे हैं, अगर उस प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो मुझे लगता है कि वो उससे जुड़ेगा।
0: जी
1: लेकिन उसके बावजूद भी काव्य जो है वो ज्यादा नजदीक लगता है मुझे, क्योंकि काव्य जो है, काव्य आत्मा की बात करता है,
0: अच्छा
1: आत्मा की गहराई से जुड़ी हुई चीज की बात करता है वो,
0: जी
1: तो उससे जो है कहीं ना कहीं। और जितना भी महान साहित्य है आपका, आप देखिए सारा का सारा पद्य में है, गद्य में नहीं। गद्य की परंपरा जो वर्तमान में है और वर्तमान में आई है तो वो भी समय की मांग थी, इसलिए वो आई है। और कबीर की जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि कबीर ने जो गुरु की बात कही है, तो मुझे तो लगता है कि कबीर ने या कबीर सरीखे जितने भी संत रहे हैं, उन्होंने जीवधारी गुरु की तो बात की नहीं कहीं ना कहीं। वो तो एक बिंदु, उस बिंदु की बात कर रहे हैं कि आप किसी को धारण कर ले वही आपका गुरु है।
0: आध्यात्मिक गुरु की बात
1: हाँ,
0: है।
1: तो वो गुरु हो जाए। हाँ मैं अक्सर बुद्ध की जब बात करता हूं, बुद्ध तो खुद कहता है कि अपो दीपो भव, अपना प्रकाश तुम बनो।

0: जी
1: या अगर आप किसी की शरण में चले गए तो ये मान के चले आपके रास्ते में, हाँ शरण में जाएं, लेकिन एक समय के बाद आप अपने स्वयं रास्ते बनाएं, स्वयं अपने गुरु बने। अगर सारी उम्र आप किसी के गुरु की शरण में रहेंगे और मुझे लगता है कि अगर गुरु भी अगर आपको सही मिल जाए ऐसा, तो सारी उम्र आपको अपनी शरण में नहीं रखेगा, वो आपके रास्ते खोलेगा। तो ऐसा गुरु होना भी जो है बड़ी अहम बात है।
0: बिल्कुल सर, हम कविता के माध्यम से फिर आगे जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं सर, कि जो कबीर भी आपके प्रिय रहे हैं, प्रवात पर भी आपका प्रिय खंड काव्य रहा है, नरेश मेहता का, मेरे ख्याल से नरेश मेहता का ही है। तो प्रवाद पर्व को पढ़ते हुए कई बार आप आंदोलित हुए होंगे, कई बार आपके मन में विचार उमड़े होंगे, क्या ऐसी दशाएं रहीं आपकी चिंताओं में जो प्रवाद पर्व से मेल खाती रहीं?
1: देखिए अनिल जी, कबीर का व्यक्तित्व जो है
0: जी
1: और नरेश मेहता का व्यक्तित्व है, दोनों में मूलतः अंतर है।
0: जी

0: हाँ, ऐसी दशाएं रहीं आपकी चिंताओं में जो प्रभात पर्व से मेल खाती रहीं?
1: देखिए अनिल जी, कबीर का व्यक्तित्व जो है
0: जी
1: और नरेश मेहता का व्यक्तित्व है, दोनों में मूलतः अंतर है।
0: जी
1: कबीर 800 साल पहले जो हुआ उस समय उसने जो बात कही समाज को जोड़ने की कविता के माध्यम से,
0: जी
1: और वो भी ज्ञान के माध्यम से।
0: हाँ
1: लेकिन ज्ञान भी कहीं ना कहीं प्रेम भी है उसमें। अकेले थोथा ज्ञान तो कबीर नहीं मानता, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भान कोए, ये जो है बात कबीर स्वयं कह रहा है। तो उस ज्ञान के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके भीतर प्रेम भी होना चाहिए।
0: जी प्रेम
1: अगर
0: भी
1: कोरे
0: होना चाहिए।
1: ज्ञानी आप होगे, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ज्ञानी बहुत लोग हैं, लेकिन आपका उस ज्ञान के साथ आपका व्यवहार भी होना चाहिए।
0: जी
1: व्यवहार कब होगा? जब आपके भीतर प्रेम पनपेगा।
0: जी
1: समस्या यही है, हम ज्ञानी तो बहुत हैं, विवेकी भी बहुत हैं, लेकिन उसके माध्यम से या अकेले हम उसके लेकर चलना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है। नरेश मेहता की जो बात कर रहे हैं आप, और मैं बार बार जब विद्यार्थी जीवन में रहा और विद्यार्थी जब से जब मैं प्राध्यापक बना और आज जिस जगह में खड़ा हूं, मैं कई बार सोचता हूं कि नरेश मेहता का प्रभात पर्व जो है उन्होंने किन परिस्थितियों में लिखा होगा कि राम का जो द्वंद है और पूरा का पूरा त्रेता युग की वो कहानी को उठाकर लेके आ रहा है। तो
0: जी
1: मुझे कई बार लगता है कि राम का व्यक्तित्व या राम राजा के रूप में या राम पति के रूप में बड़ी अहम बात है। ये
0: जी
1: राजा के रूप में तो उसने बहुत कुछ कर दिया, क्योंकि आदर्श स्थापित करना था, मर्यादा स्थापित करनी थी उसने। लेकिन एक पति के रूप में जब हम उसकी देखते हैं तो वहां कमी नहीं रही,
0: जी
1: लेकिन उसको समझा नहीं।
0: समझा नहीं।
1: क्योंकि व्यक्ति के ऊपर जब सत्ता का प्रभाव होता है, व्यक्ति के ऊपर जब ये बात आ जाती है कि मैंने मर्यादा स्थापित करनी है, तो कहीं ना कहीं मूल्यों का हनन होगा ही होगा,
0: होगा
1: और वो
0: होगा
1: हुआ। और सीता आखिर में जो है धरती में समाती है और जो बात कही गई है, तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं उसमें। और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, आपको मुझे बार बार ये चीज उठती है कि वो जो समय रहा होगा, अगर एक धोबी एक राजा से सीधा ये प्रश्न पूछ रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण बात है।
0: महत्वपूर्ण बात, असली
1: एक तरफ तो
0: लोकतंत्र
1: हम
0: है।
1: जो आडंबरों की बात कर रहे हैं या परंपराओं की बात कर रहे हैं कि हमें अधिकार नहीं दिए गए बोलने के, लेकिन वहां अगर एक धोबी, साधारण धोबी अगर वो बात कर रहा है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं बात चलती, अधिकार तो थे, लेकिन अधिकार के साथ साथ बोलने की हिम्मत किस में है,
0: ये महत्वपूर्ण है।
1: तो ये महत्वपूर्ण है। और वहां राम का जो व्यक्तित्व है, राम जब कहता है कि भरी सभा में, और उसको कहा गया जब कि आप अगर कहें तो हम इस धोबी को जो है यहां से आर पार लगा दें, लेकिन राम कहता है कि नहीं, इतिहास पुरुष बनने के लिए, पुराने पुरुष बनने के लिए हमें हर व्यक्ति की, समाज के उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की भी बात सुननी पड़ेगी, तब जाके कहीं मर्यादा आदर स्थापित होगा। राम ने किया वो,
0: ये विचारों का
1: ये
0: लोकतंत्र है।
1: विचारों का लोकतंत्र है। और जो विचारों का लोकतंत्र ही जो है, इसलिए क्योंकि ये लोकतंत्र है ही विचारों से चलता है, लेकिन वर्तमान लोकतंत्र जो चल रहा है आप देख रहे हैं, इसलिए
0: अच्छा,
1: साहित्य
0: एक
1: है।
0: चीज जानना चाहते थे सर, कि कविताएं निसंदेह कि ईमानदार रही हैं, तो कभी भी ईमानदार रहा होगा। जो एक समस्या आ रही वो ये कि अच्छी रचनाएं जन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो पहुंच जब आम जन तक अच्छी रचनाओं को पहुंचाया जाएगा, और जब वे पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी कहते हैं पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व का विकास होगा, तो जब अच्छी रचनाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, तो वो व्यक्तित्व का विकास हो कैसे? अब यहाँ एक प्रश्न जो बहुत मजबूत होकर उठता हो ये कि रचनाओं को पहुंचाया कैसे जाए, या पहुंच रहा है कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, क्या लग रहा है आपको?
1: नहीं, भूखे पेट भजन ना होए,
0: जी
1: ये कहावत जो है हमने हम सुनते आए हैं,
0: जी
1: लेकिन मुझे लगता है कि भूखे पेट ही भजन होता है। अगर जिसका पेट भर गया ना तो
0: भजन
1: भजन नहीं
0: क्यों
1: करेगा।
0: करेगा, सही बात है।
1: लेकिन जो बात आप जो मुद्दा उठा रहे हैं कि आम जन के पास वो रचनाएं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, तो इसमें पहला प्रश्न ही यही उठता है, क्या आम जन को साहित्य को पढ़ने के लिए समय है? जब उसके पास 2 समय की रोटी कमाने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार की उसके पास समस्या है, रहने की उसके पास समस्या है, तो डॉक्टर अनिल जी आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति, एक जनसाधारण जो है, कबीर को, नानक को, या गुरुओं की वाणी को, या महाभारत को, या रामायण को पढ़ेगा? वो जब तक वो जीने के जो संसाधन है, जब तक उसको वो नहीं मिलेंगे। इसलिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया था कि आम जन की आवाज उठे, लेकिन कहीं ना कहीं वो

0: नहीं रह गए। इसलिए आपका जो मुद्दा आपने जो उठाया है कि साहित्य व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इसमें कोई शक नहीं है साहित्य व्यक्तित्व का निर्माण करता है, लेकिन निर्माण तब करेगा जब उसकी खाना पूर्ति के लिए वो सारी चीजें पूरी होंगी, तब जाके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। वरना व्यक्ति के पास जो साहित्य पड़ा है और उसको दो समय की भोजन की चिंता है, तो कैसे वो रामायण पढ़ पाएगा, कैसे वो गीता पढ़ पाएगा।
1: अच्छा सर, आप साहित्य के आचार्य हैं और निस्संदेह के साहित्य के एक अच्छे विद्यार्थियों में से रहे हैं। वर्तमान में भी आपकी जो अध्ययनशीलता है वो निरंतर प्रगतिमान है। एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि क्या साहित्य के माध्यम से रोजगार तलाशा जा सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल तलाशा जा सकता है।
1: कैसे?
0: आज की आपकी वर्तमान की सरकारें और या जो जो आज अब एआई की जो बात कर रहे हैं, पीछे मुझे याद है कि भारत सरकार ने जो कई योजनाएं ऐसी चलाई, कौशल की योजनाएं, ठीक है, रोजगार कैसे हो सकता है साहित्य में रोजगार। आज के यूथ के सामने समस्या ही सबसे बड़ी है कि कबीर नानक को पढ़ के मैं रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा, लेकिन कमा सकता है वो। आज तक हमने कबीर नानक को, रैदास को, संतों को जिस तरह से पढ़ाया है, जिस दृष्टि से पढ़ाना चाहिए था, हमने वहां तक हम उनको ले ही नहीं पाए हैं। हमने
1: प्रयोगशील
0: प्रयोग नहीं किए उनपे,
1: जी
0: हमने सिर्फ गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग उपाय पढ़ा दिया, हमने जो है जात पात की बात कर दी उसमें, लेकिन कबीर में, नानक में जो कौशल है, रोजगार की जो संभावनाएं हैं, वो हमने नहीं तलाशी। आज हमने उनको तलाशना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो चीजें जब आ जाएंगी, तो मुझे लगता है कि कबीर को लेके आप पूरा का पूरा तंत्र खड़ा कर सकते हैं। हिम्मत
1: जी
0: होनी चाहिए, यहां पे प्रतिभा होनी चाहिए,
1: जी
0: हमने उस प्रतिभा को तलाश करना है, और कुछ भी संभावना हो सकती।
1: तो साहित्य में रोजगार तलाशे जा
0: हंड्रेड
1: सकते हैं।
0: परसेंट 100% साहित्य में संभावनाएं हैं, अगर सरकार ये चाहे, सरकार मौका दे ऐसे लोगों को, आप देखिए कैसे रोजगार की संभावना नहीं हो सकती।
1: एक मुद्दा और बनता है सर यहाँ पे कि साहित्य में रोजगार तो तब आएगा जब पाठ्यक्रमों में निर्माण नया परिवर्तन होगा, कुछ नए माध्यम बनाए जाएं, जैसे फिल्मी दुनिया के कुछ स्क्रिप्ट जोड़े, कुछ सिलेबस में जोड़े जाएं, कुछ अदर फील्ड के जोड़े जाएं, कुछ इंडस्ट्री से जोड़े जाएं। तो क्या आज के जो साहित्य के जो पाठ्यक्रम हैं, क्या उसमें बदलाव संभव है? और अगर संभव है तो कितना हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है?
0: देखिए अनिल जी, सरकारें चाहती बदलाव हो। अभी
1: जी
0: पीछे जो भारत की शिक्षा नीति 2020 जो है, जो आई है
1: जी
0: 2020 जो है,
1: जी
0: उसमें सरकार का बिल्कुल स्पष्ट अध्यादेश है ये कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में सिलेबस चेंज किया जाए। अब सरकार तो चाह रही है चेंज हो जाए, लेकिन बात वही आती कि जो मठ बने बैठे हैं, मठों को ध्वस्त करना इतना आसान नहीं है। मुझे याद है कि 20 साल पहले जब एक बार हमने बिहारी को चेंज किया था, कितना मुद्दा टीचरों ने उठाया था, लेकिन उसके बावजूद उसमें अच्छे लोग भी थे, उन्होंने इस चीज को समझा और नए सिलेबस को लेकर आए। हम नई चीज को ग्रहण करना हमने स्वीकार करना पड़ेगा। हमें आदत पड़ी है पुरानी चीज को देखने की, हमें आदत पड़ी है कि ये चीज आदत क्यों पड़ी है, क्योंकि उसमें हमने मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने रट्टे लगा लिए उस चीज के। इसलिए नए लोगों को भी हमें मौका देना पड़ेगा। आज से 800 साल पहले हम कबीर को लेके, मैं ये नहीं कह रहा कि कबीर को बंद कर दे पढ़ाना आप,
1: जी
0: नहीं,
1: जी
0: कबीर को भी पढ़ाएं, नानक को भी पढ़ाएं, रैदास को भी पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि वर्तमान के जो लेखक हैं, वर्तमान की जो मीडिया कर्मी है, वर्तमान के जो पत्रकार जो हैं, वर्तमान का जो अस्मितावादी मूलक
1: विमर्श
0: विमर्श जो चल रहा
1: जी
0: है,
1: जी
0: वर्तमान की राजनीति को लेकर जिस प्रकार से साहित्य लिखा गया है, कोरोना में जो साहित्य रचा गया है, ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। आएंगी कब कि दो तरह के लोग हैं समाज में, एक परंपरावादी लोग हैं, एक खुले विचार के लोग हैं।
1: जी
0: परंपरावादी लोग ये चाहते हैं कि जो परंपरा चल रही है उसका ध्वज विध्वंस ना हो, टूटे ना हो, क्यों, क्योंकि उनको वो रास्ता आसान लग रहा है। लेकिन जो परिवर्तनशील लोग हैं, जो नई चीज को जोड़ना चाह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि पुरानी चीज भी साथ चले, लेकिन नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार का एजेंडा था कि नई चीजें आए, इतनी नहीं आ पा रही है, हम सहन नहीं कर पाए नए लोगों को, समस्या ये हो
1: सहन
0: रही
1: नहीं
0: है।
1: कर पा रहे।
0: हमने हमने फोबिया बना लिया कि मेरे दिमाग में वो साहित्यकार है, उससे बढ़िया कोई है ही नहीं, समस्या यही आ रही है। इसलिए नए लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है और सरकारों के पास भी ये चीजें नहीं पहुंच पा रही है।
1: अच्छा सर, एक प्रश्न ये भी उठता है कि वर्तमान दौर सोशल मीडिया का दौर है, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि सारी की सारी चेतना, सारे के सारे युवा सोशल मीडिया केंद्रित हो गए हैं। तो ऐसे समय में जो साहित्य की उपयोगिता रही है, जो पुस्तकों की जरूरत रही है, कहीं वो कम होती तो नहीं दिख रही है?
0: नहीं डॉक्टर नील जी, आप ये बात मुझे लगता है, क्योंकि आप भी प्राध्यापक हैं, आप आलोचक हैं और
1: जी
0: आप साहित्य को लेकर गंभीर हैं, आप शायद इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे,
1: जी
0: लेकिन जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वो

0: सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो आज का यूथ जो है वो ये चाह रहा है कि सब कुछ मुझे उस छोटी सी जो चिड़िया जो मोबाइल है इसमें मिल जाए, लेकिन सब कुछ उसमें नहीं मिल सकता।
1: जी
0: आपको पुस्तकों के पास जाना ही पड़ेगा। और मैं यदा कदा जब पुस्तक मेले जब लगते हैं वहां जाता हूं या लाइब्रेरी में जाके देखता हूं कि हम एक चीज बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं कि आज का यूथ साहित्य नहीं पढ़ता। ऐसी बात नहीं है, साहित्य पढ़ रहा है,
1: जी
0: उस किताबों के पास वो जा रहा है।
1: जी
0: सारी सारी रात बैठ के जो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है वो किताब पढ़ के तो कर रहा है ना, वो सोशल मीडिया पे बैठ के थोड़ी पढ़ रहा है।
1: जी
0: जिसको आप स्वयं आलोचना कर रहे हैं, आलोचक हैं आप, जब तक 10 किताबें नहीं पढ़ेंगे आप आलोचना नहीं कर सकते।
1: नहीं कर सकते,
0: एक
1: सही बात है
0: अध्यापक को क्लास में जाने के लिए 10 किताबों को पढ़ना पड़ेगा,
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं पढ़ाई। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वर्तमान दौर जो एआई को लेके और जिसमें टेक्नोलॉजी के नए नए संसाधन आए हैं, कहीं ना कहीं सरकारें, कहीं ना कहीं पूरी की पूरा जो लोकतंत्र के साथ भारत का जो विश्व तंत्र जो लगा हुआ है, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तानी के लोगों का व्यवहार जो था, एक शिक्षा नीति रही, उसके बाद हमारा जो रहन पहन खान पान जो है, ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक ऐसी लत लगाने की कोशिश की जा रही है कि इससे जुड़ जाए यूथ और सारे काम छोड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यूथ भी समझता है अगर कामयाब होना है पुस्तकें पढ़नी
1: अच्छा, एआई ने एक नया
0: है।
1: समस्या खड़ा कर दिया है कि जहाँ भी जिसको ज़रूरत हो रही है टॉपिक डाल रहा है और पूरे का पूरा मैटर उसको निकल आ रहा है। पिछले दिनों कुछ शिक्षण संस्थाएं भी यूजीसी ने उनके शोध पत्र निरस्त किए, बैन हुए, और रचनाकारों में हम देख रहे हैं कितने कवि कविता भी लिख दे रहा है। बारिश के मौसम में डालो तो बारिश का लिख देगा, प्रेम का डालो तो प्रेम का लिख देगा, कहानियां लिख दे रहा है, इवन वार सब कुछ लिख दे रहा है। तो इससे बचा कैसे जाए? एआई आई तो थी सुविधा के लिए, लेकिन एक समस्या बन गई है कि वास्तविक लेखन और एआई के लेखन में फर्क कैसे किया जाए, बचा कैसे जाए?
0: देखिए डॉक्टर अनिल जी, एआई समस्या नहीं है, एआई समस्या थोड़ी, समस्या हम है स्वयं।
1: जी
0: जो व्यक्ति एआई को लेके और एआई के माध्यम से सब कुछ करना चाह रहा है, समस्या उस व्यक्ति की है, एआई की समस्या नहीं है। सरकार ने जो सुविधा दी है उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप तुरंत, अगर आपके दिमाग में कोई चीज नहीं आ रही, विचार नहीं आ रहे हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। वो सहायता के लिए है, जैसे स्कूलों में कॉलेजों में आपने देखा गाइड लगाई गई, गाइड का काम यह था, या गाइड फिल्म भी आई एक बहुत बढ़िया, उसमें दिखाया गया कि व्यक्ति किस प्रकार से गाइड करता है, निर्देशन कैसे करता है। लेकिन अगर आप गाइड को ही सब कुछ समझ लें वो नहीं हो सकता, आपको पुस्तक और गाइड में अंतर करना पड़ेगा। एआई आपका रास्ता दिखाता है। हम जो कह रहे हैं कि एआई रास्ते बंद कर रहा है, रास्ता एआई बंद नहीं कर रहा, रास्ते वो साहित्यकार, रास्ते वो पाठक, रास्ते वो व्यक्ति, रास्ते वो राजनेता जो एआई को ही उठाकर अपनी बनाकर डाल रहे हैं, ये रास्ते उनके बंद हो रहे हैं। आज नहीं तो कल समाज को, जनता को पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। इसलिए मुझे लगता है कि एआई का नुकसान नहीं है, एआई का फायदा ही है। एआई को समझकर वहां से अगर हम जानकारी लेके और फिर हम अपनी प्रतिभा से अगर कोई चीज बनाते हैं डालते हैं, वो प्रभावशाली रहेगी और उसका कोई विकल्प नहीं है।
1: आज के युवाओं को अगर कोई साहित्य पढ़ने के लिए सुझाना हो, आज के युवाओं को अगर कोई साहित्य पढ़ने के लिए सुझाव देना हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के साहित्य को पढ़ने की बात कहेंगे?
0: देखिए आज साहित्य जो है हमारे पास समाज में, 800 साल पहले वाला साहित्य नहीं है। आज वो 800 साल का साहित्य को लेके मिशन करके जो साहित्य रचा जा रहा है, आज का साहित्यकार चिंतित है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल श्रेयाम आज के साहित्यकार को कटघरे में खड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं साहित्यकार हूं, कवि हूं। कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को समझना होगा, साहित्य और साहित्यकार, और आज का युवा जो है किस प्रकार से साहित्य जोड़े, कैसा साहित्य पढ़े। फिर बात वही आती है कि रुचि क्या है उसकी। अगर मेरी रुचि ला में है, अगर मेरी रुचि पर्यावरण में है, मेरी रुचि अगर तिलिस्मी कहानियों में है, तो मैं इस प्रकार की चीज पढ़ूंगा। मेरी रुचि अगर नैतिकता में है तो मैं उस तरह की कहानियां पढ़ूंगा। मेरी रुचि अगर गुरु में है तो मैं उसी उसी प्रकार का साहित्य पढ़ूंगा। जो पढ़ने वाला पाठक जो है वो ये निर्धारण करेगा कि मैंने पढ़ना क्या है। वो मेरे कहने से या आपके कहने से नहीं पढ़ेगा, वो अपनी रुचि के अनुसार पढ़ेगा कि उसको मिलता कहाँ, किस चीज में क्या मिल रहा है।
1: जी
0: और वो आज का साहित्यकार मुझे लगता है पहले वाले साहित्यकार से ज्यादा जागरूक है, क्योंकि इसकी जागरूकता का कारण यही है कि चारों तरफ उसके जो है इंटेलिजेंसी जो ये घूम रही है, उससे वो सीख रहा है। और वो हर तरह की पाठक की रुचि क्या है उसी प्रकार का साहित्य समाज के सामने लेके आ रहा है। ये बहुत बड़ी अहम बात है।
1: जी
0: कबीर नानक वाला समय नहीं रहा अब, लेकिन कबीर नानक ने भी ना चाहते हो भी वो चीजें सारी उसमें मिल जाएंगी आपको, खोजनी पड़ेगी, हम खोजना नहीं चाहते, समस्या ये
1: शौके दीदार है तो नजर। हाँ।

0: हम खोजना नहीं चाह रहे।
1: जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस विषय पर वार्ता करके, और निसंदेह कि युवाओं को खोजने की दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी शायर का ये कहना भी लगभग रहा है कि उधार की नज़र से सौंदर्य के लक्षण नहीं दिखाई देते, तो शौके दीदार है गर तो नज़र पैदा करती।
2: व्यक्तित्व निर्माण में साहित्य की भूमिका, इस विषय पर आप सुन रहे थे एक परिचर्चा। प्रतिभागी थे डॉक्टर अशोक कुमार आस एवं डॉक्टर अनिल पांडे। अब इसी के साथ परिमल का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सोहन कुमार। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से सुन रहे थे। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ पल बाद।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:30 ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ।
4: ਆਨਕ

हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाकस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। साहिब श्री गुरु रामदास जी द्वारा उचारित ए फरमान भगतां अते प्रभु विचली अटुट प्रीत दा लखायक है। अकाल पुरख तुर तो ही भगतां दी पैज रखता आया है ते भगतां नूं अथाह प्यार करता है। साहिब श्री गुरु अमरदास जी राग सूही विच उचारित बचन विच फरमाउंदे ने, भगत जना की हर ज्यो राखै जुग जुग रखदा आया राम। सरवण करदे आं भाई दिलबाग सिंह, भाई गुलबाग सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

भगत जना की हर जियो राख है, जुग जुग रखदा आया राम। इस शब्द का गायन किया सी भाई दिलबाग सिंह, भाई गुलबाग सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। प्रभु प्यारे भगत अकाल पुरख प्रभु ते ही ऊट आसरा रखते हुए उस दे वल ही दृष्टि रखते हैं, क्योंकि उही औकड़ां वेले भगतां दा सहाई हुंदा है। ओ भगतां दे जीवन विच आउण वालियां औकड़ां नूं मूल तो ही संघारित कर दिंदा है। दूत दुश्मन सब तुझते निवरै, प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा। सरवण करदे आं भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: भूत दुश्मन सब तुझते निवरै, प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे पगत दुखाए वो तत्काल तुम मारा। इस शब्द गायन कीता सी भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरसेवक सिंह।
1: तनासरी महला पंजवां। दूत दुश्मन सब तुझते निवरै, प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी ओर हर नीत, मुरार सहाय हो दास को, कर गह उधरो मीत। सुनी बेनती ठाकुर मेरै, खस माना करे आप, नानक आनंद भय दुख भागे, सदा सदा हर जाप। विचार अधीन पावन।

सबको तेरा वस अगम अगोचरा, तू पगता कै वस पगता ताण तेरा। इस शब्द का गायन किया सी भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा।
2: हाँ जी।
3: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां कारा जावांगे। हाँ
2: क्यों? पर मैं
3: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
2: इन्ने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई 30,000 दियो, नहीं तां बेटा जेल जावेगा।
2: जेल तां तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
3: ओए
2: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है। इसलिए घबराओ ना, पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
4: हेलो मम्मा।
2: हाय।
5: आरबीआई कहिंदा है
2: जानकार बनो, सुचेत रहो।
6: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हुण वेला हो रहा परिचय दा, यानी कि अजा तक दे प्रसारित होण वाले प्रोग्राम ते उहनां दे प्रसारण समें दा। ते लो फिर एक चात पाइए अजा तक दे प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय।

0: क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20। फर्स्ट बॉल 20। कुछ मुकाबला

0: When I was taking the run, she had to go around.
1: श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
3: धन्यवाद।
2: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
3: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
2: जी।
3: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
2: जी।
3: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
2: जी।
3: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया, चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लैवेंडर आया, अभी हाल ही में 3-4 या 2 या 3 दिन का कैंप था मुंबई
2: जी,
3: में
2: जी,
3: तो हमारे युवा लगभग 30-40 या 50 लाख का लैवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
2: जी,
3: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
2: जी,
3: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय हैं, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिलाकर के हमारे यहां सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइमलाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
2: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये मात्राएं किस तरह से दिखाती है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
3: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है, द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
2: बिल्कुल
3: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया, जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि

0: पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O, ब्यूट्रोस ऑक्साइड। लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है, जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है। और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तसव्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के, जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी, और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट

0: जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233 जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स हैं जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसे उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे, 80 के। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 verticals हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
1: जी।
0: यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर लें और हम उससे आगे बढ़ जाएं।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा?
0: ये बात करने से पहले मैं

0: ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रिसाइकलिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हटकर के सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा, और उसमें भी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वेन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए, कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि साहब ये इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शंस बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए।
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है, जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं।
0: अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट, लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउसहोल्ड।

0: एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर उससे हमारी क्षमताएं, और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इम्पोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले। 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए, और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है
1: जी।
0: अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो?
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी,
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहाँ हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं। और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, जिस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग-अलग हैं, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं, जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है तो खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अ कंपनी विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है। तो समुद्र

0: से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहाँ 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगा।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा। अगर हम उसको तराश सके, हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर, तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हम 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution, developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
5: Thank you for having me.
4: Ashish, I wanted to begin with your work, which is basically at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquire the transnational muscle?
5: I think we have. As you pointed out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things. As you mentioned, with say something like Jan Dhan, what we've done is amazing. Or even if you look at our capital markets, when we changed the architecture to bring in SIP, no other emerging market, you know, has the scale at which. And of course, rolling out our, whether it's roads, rural roads, Saubhagya for electricity, Jal Jeevan. So I think in mission mode, we have

आ गया। उसने आके दुकान दी सफाई करनी शुरू कर दित्ती। उसने सफाई करदे कल वाली चीज़ वल निगाह मारी, पर वो उत्थे नहीं सी। उसनू बिंदर ते शक हो गया। वो हैरान सी कि उसने किस वेले चीज़ चुकी ते किथे लुकोई। सोहन कुछ नहीं कर सकता सी, पर उसनू इस गल दा बहुत दुख सी। इस तरह बिंदर रोज़ ही कुछ ना कुछ ले के जांदा, आखिर सोहन तो रिहा ना गया। उसने बिंदर नू कहा, बिंदरा कुछ तां शर्म कर, एक घर तां डैण भी छड्ड दिंदी है। सेठ भला मानस आदमी है, कदे उसने भी अपने नाल दूतिया भा कीता है? सेठ तां सेठ हुंदे ने, इन्हां नू बख्शना नहीं चाहीदा, ये बथेरियां ठगियां मारदे ने। चल तेरी मर्जी है, बस तेरे मूहरे हाथ बांधा, चुगली ना करी। चंगा, सोहन ने दुखी मन नाल कहा। एक दिन बिंदर दुकान ते ना आया तां सोहन सेठ नाल गल्लां करन लगा। उसने गल्लां गल्लां विच सेठ नूं दसदिआं कहा, सेठ साहब कदे कदाई समान देख लिया करो, मैनू थोड़े हुंदे काहदा डर है? सेठ ने हस के कहा, नहीं जी फिर भी चंगा हुंदा है। ओए सोहन, मेरे तीन अखां ने, मैं तां मिंटां विच दस सकदा हाँ किन्ना समान आया ते किन्ना बिकिआ। सोहन नूं सेठ मूर्ख लग्गिआ, जो अपनी मूर्खता दीआं डिंगां मार रिहा सी। ओह मन ही मन सोचण लग्गा, उदण पता लग्गू जिस दिन अद्धी दुकान बेली होगी। उधर जदों बिंदर चोरी दीआं चीज़ां लै के घर जांदा तां उसदी माँ उसनू कहिंदी, बिंदरा देख के चल, खर्च घट कर, तनखाह केड़ी आऊ तेरी, ये तां रूंगा है, तनखाह तां अड्ड है। बिंदरा चोरी पाप है, माड़े काम का माड़ा फल हुंदा है। बेबे तू तां सतयुग दीआं गल्लां करदी है, ये सेठ बथेरा वढ़दे ने लोकां नू। पुत इन्हां दे निकलदे भी ने। मां छड्ड परां ये गल, कोई होर गल कर जे करनी है। बिंदर दे कहण ते उसदी माँ पुन्ना चुप कर गई। उसनू अपने पुत दी भैड़ी आदत चंगी ना लगी। उसदा जी करदा सी कि वो दुकानदार नू सब कुछ दस देवे, पर वो चुप कर गई। एक दिन वो जान बुझ के सोहन दे घर कोल दी लंघी। सोहन बाहर खड़ा सी। उसने उसनू बुलाउंदिआं पुछया, सोहन किवें है पुत? ठीक आ मासी। पुत चंगी तनखाह दे दिंदा सेठ? हाँ मासी। ठीक है भाई, पर तुसी भी इमानदारी नाल कम करो। मासी गुस्सा तां नहीं करदी जे एक गल कहां? तू कह जेड़ी गल कहनी है। मासी तू बिंदर नू समझा, वे डुब्बी ताइयों जे साह ना आया। मैं तां तैनू कहिंदी सी बई तू ओनू समझा, मैं तां समझा के देख लिया, फिर आपे भुगतू करनी दा फल। कह के बिंदर दी माँ पुन्ना घर नू मुड़ गई। सेठ ते उसदी घरवाली कोई कच्चियां गोलियां नहीं खेडे सन, उन्हां नू सब कुछ पता सी। एक दिन सेठ दी घरवाली शकुंतला ने कहा, जी आ नौकर तां आपां बेकार ही रख लिया। कोई नहीं, हालात बदलन ते पहलां वाले ही आ जाणगे, इसने तां 15 दिनां विच ही तपाते। कोई नहीं, धीरी रह धीरी। महीना बीतण ते सी 30 अप्रैल दा दिन आ गया। अपने रोज़गार अते कुछ बीमारी दे मठा पैण कारण कामे वापस परतण लगे। राजू ते प्रकाश दा फोन भी आ गया। सेठ भी खुश सी। उसने सोहन ते बिंदर नूं कहा, अज महीना खत्म हो गया, थोड़ा हिसाब कर दें। कर दिओ जी, दोवें इकट्ठे ही बोले। लै बई सोहन 7000 रुपये गिण लै। सोहन ने रुपये गिण के कहा, ठीक है जी। लै बई बिंदर सिया 1000, बाकी शाह जी। बिंदर ने 1000 फड़

सुनते हैं अगला गीत फिल्म नमक हलाल तो। आवाज़ा आशा भोसले ते बप्पी लहरी दियाँ।

में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन

0: co-production और co-manufacturing की दिशा में जाना चाहते हैं, और इसके चलते जितना जितना ज़्यादा production, जितना ज़्यादा design, जितनी ज़्यादा manufacturing भारत में हो सके उतना अच्छा है, और वो हमारी हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G

0: से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
1: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
2: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
4: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegations.

0: ये आकाशवाणी है। रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्रीराम का गायन। आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वीएसपी गायत्री सिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's broadcast of Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a vocal recital by Sri J.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आखेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वही संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर हैं और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। He is known for his expressive and dynamic

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chaputal.

0: श्री जी श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पेरवली जयभास्कर and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसपी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाई श्री जे एस श्री राम in the broadcast of Ravivasraya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on violin by VSP Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasraya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया।

0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचेरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
2: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation, and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling, and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the India-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. He highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance and the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit.

0: हेलो
1: नमस्कार शर्मा जी। अश्विनी
0: अश्विनी।
1: जी,
0: हाँ
1: अच्छा ड्यूटी बदल गई अज।
0: ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: महेश गर्ग मंडी हरजी राम मलोट।
0: होर सुनाओ जी, की हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया
0: ते गीत दी फरमाइश
1: जी। शाजिया ने जीर दा चन मेरे मक्खन।
0: जरूर सुनावांगे फोन करने लिए। शुक्रिया जी, इसे तरह अपनी फरमाइश लैके AIR दे नाल जुड़ते रहा करो जी।
1: धन्यवाद।
0: ज़िला फाजिलका पिंड कुड़ियाना तो भोला स्वैग डॉक्टर अमनजीत सिंह, रितमन जोत, गुरसेवक RP सिंह, नछत्तर सिंह, अजीत सिंह स्वैग ते इन्हों का पूरा परिवार, टाली वाला जट्टा तो साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर, गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा ते परवीन तनेजा। गीत शाजिया मंजूर की आवाज़।

0: हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते कित्थो जी?
1: मनजीत कौर बोल रही है, दिल्ली से जी।
0: ते होर सुनाओ जी, केहो जिहा बीते अज दा दिन?
1: बस अज का दिन ठीक बीते। हाँ,
0: मतलब ठंडे ठंडे मौसम तो बाद फिर तो गर्मियां शुरू।
1: गर्मी शुरू हो गई आज, बहुत गर्मी से हूँ।
0: ठीक है जी, ते मौसम सुहाना हो जाएगा जदों सारे दोस्त सुनेंगे तुहाडी पसंद दा गीत जी। ते
1: अच्छा
0: गीत दस दियो जी, केड़े गायक दा सुनाइए तुहानू?
1: जी,
0: सरदूल
1: सरदूल
0: सिकंदर दा
1: सिकंदर दी बोलियां सुना दो जी।
0: जरूर सुनाने हैं जी। फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
0: पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोहन सिंह बूक, निशान सिंह बूक, सीरत कौर, कीरत कौर ते इन्हां दी दादी जसवंत कौर, राज मिस्त्री बोदला ढाणी नेड़े थाना अरनी वाला तो सुरिंदर कौर बूक, बलविंदर कौर, रीना राणी, अमर लाल, बलदेव सिंह, मोता सिंह नगर जलंधर कूल रोड तो मनोज जैन, समता जैन, अरहान जैन, वासल जैन, डॉलर जैन, बिट्टू राजा, राकेश जैन ते अनुभव जैन। हाजीपुर जिला होशियारपुर तो गोकुल दास, इन्हां दी पत्नी बिमला देवी, के कोंडल ते रजनीश। गीत बोलियां सरदूल सिकंदर दी आवाज़ च।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जनाब, ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: सर जी, मैं जनक राज जी गुरदासपुर तो।
0: क्या बात है, की कर दे हो जनक राज जी?
1: सर जी, मेरा हलवाई का काम है जी, खाना खाना बनाना है जी, ब्याह
0: क्या बात है
1: शादी
0: जी।
1: है जी।
0: ते जदों विवाह शादियां नहीं हुंदे फिर उदों की काम करदे हो जी?
1: हाँ जी,
0: मैं कहा जदों विवाह शादियां नहीं हुंदियां फिर की काम करदे हो जी?
1: नहीं महाराज, मेरे मालक की कृपा है, मैं लकी रहनी
0: चलो जी,
1: हुई
0: मालक हमेशा मेहर करे दे, काम कार चलता रहे जी।
1: जी।
0: ते गीत दी
1: हाँ जी, हाँ
0: फरमाइश
1: जी, हाँ
0: दस
1: जी।
0: दियो जी, गीत केड़ा सुनाइए जी?
1: गाना जी ममदासी की आवाज है जी, फिल्म लगी फसी थोनू लगी वाले कदे नहीं सौंदे तेरी कि आकर लग।
0: ये गीत जरूर सुनावांगे जी, लगी वाले तक कदे नहीं सुनते। फोन करने लिए शुक्रिया जी। गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका बलविंदर विरक जय तेग विरक ते मीका विरक, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो है जी। विनोदपुरी वीपी रंजू अशोकपुरी सुशील बीकेपुरी कैलाश अनीता ममता मेघा पूजा गगन कपूर गुंजन लालसा रमा मलिक कुणाल मलिक ते निधि मलिक, हरीशपुरी सतीश राकेश विनोद पाली डीसीपुरी ते अरुणपुरी। इन्हां सारे दोस्तों की मिली जुली फरमाइश तुहाडे सेट ते।

0: हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दो जनाब, कौन ते कित्थों जी?
1: सर जी, मैं राजू बोलदा जी, चंडीगढ़।
0: ते गीत दी फरमाइश दस दो राजू जी, केड़ा गीत सुनाइए तुहानू?
1: मनोहर वारस का गीत सुनना जी, पंजाबी विरसा।
0: जरूर सुनावांगे जी, फोन करने लई शुक्रिया जी। आदर्श नगर मलोड़ तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शाइना ते निवान शर्मा। मंडी गोलूवाला राजस्थान तो ब्रिजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। नवां शहर गुज्जरपुर कलां तो खुशहाल सिंह मल, दिलजीत कौर, त्रिशना, मनीषा, पूजा, मंजू ते गुरनीत। इन्हां दोस्तां दी फरमाइश मनमोहन वारिस की आवाज़ च।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार अश्विनी जी।
0: नमस्कार जी, ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: श्री गुरु रविदास नगर मलोट तो फकीर चंद रसगणिया जी।
0: होर सुनाओ फकीर चंद जी, की हाल चाल
1: बहुत
0: है तुहाडे?
1: बहुत बहुत वधिया जी। तुसी सुनाओ, जलंधर दा मौसम किदां वा?
0: ते दिन किहो जिहा बीते जी? बहुत वधिया जी,
1: दिन अज बहुत वधिया बीतिया जी।
0: ते शाम भी वधिया हो जाएगी जदों सारे दोस्त सुनणगे तुहाडी पसंद दा गीत। ते
1: हाँ,
0: पसंद दस दिओ जी, कीड़ा गीत जी?
1: जगमोहन कौर दा सुना भाई, नच्चा मन दाने तंग मेरी जलंधर भाभी। थैंक
0: क्या बात है जी, जरूर जी, फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: यू जी अश्विनी।
0: मुल्लापुर दाखा मंडी तो राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक, गौतम, बिट्टू, मोंटू, संजीव, सारिका, अरिहंत, सुरभि, मनोज, समता ते सीमा जैन। मलोट तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमनदीप गिल, ते छाजरी तो सुखबीर सिंह। बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू, अविताज सिद्धू, धौला किंगरा तो जगतार जग्गा, चकला बाजार समाना तो पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता जिंदल ते हंसमुख जिंदल, ते गीत जगमोहन कौर की आवाज़ च।

0: हेलो।
1: हेलो अश्विनी भाई, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जनाब। ते इन्ने वधिया स्टाइल दे नाल नाल अपना भी तारुफ करा दियो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: हाँ जी अश्विनी भाई, बिट्टू बोल रहे जी, बिट्टू बोल रहे जी, दूरदर्शन बैठा मंगू सी। गीत
0: क्या बात है जी। ते बिट्टू जी, गीत केड़ा सुनाइए जी?
1: तुझे सुना दो, महिंद्र कपूर का गाना जी, तुमका प्यार का सुना दो, बहुत मेहरबानी, लेट होता है जी।
0: जरूर जी, सारे दोस्त सुनन तुहाड़ी फरमाइश दा गीत, तुनका प्यार दा।
1: हाँ जी
0: फोन करने लई
1: बिल्कुल,
0: शुक्रिया जी।
1: ओके जी बाय।
0: पिंड राजपुरा दी पंचायत वालों है जी, हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह ते डॉक्टर धर्मवीर प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन कुलदीप कौर, एकम दमन ते अभिजोत, ये सारे है जी। करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुचो कैंचियां तो, जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया ते पप्पी भाटिया। गीत तुनका प्यार दा।

अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। एक कथन शब्द दी महिमा प्रगट करता है। तुर्की बाणी जो गुरु साहबान संता महापुरशा भगतां पट्टा सिखा अते होरना महापुरशा दी रसना तो उचारी गई, ओ अमृतमई है, जिसनु सरवण करके इंसान परम गति प्राप्त कर सकता है। तांते फिर ऐसे अकाल पुरख तो वारने जाना चाहिदा है, जिसते अमृतमई बोल असी सरवण करदे हां ते मन विच वसौंदे हां, मन आनंदित हुंदा है। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

कोल कुमाई लालना गुरमन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। उस परमात्मा नाल अथा प्रीत रखन वाले गुरमुख जनानू उस इलाही सद दितांग हुंदी है। जे कोई गुरु का प्यारा गुरु के बचना नू अलाउंदा है तो फिर बड़े प्यार नाल उस सच्ची सद नू गुरु के प्यारे सरवण करदे ने। सद तो भाव बचन हन, आवाज है। तेरा सदड़ा सुनी जै पाई जी को बह अलाए। सरवण करदे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्हां दे जत्थे वलों गायन कीता होया ये शब्द।

0: तेरा सदड़ा सुनी जय पाई, जे को बहे अलाए। आप जी सरवण कर रहे सो डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्हां दे जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसविंदर सिंह दर्दी।
1: सूही महला पहला। जोगी होवै जोग वै, भोगी होवै खाए, तपिया होवै तप करे, तीर्थ मल मल नाए। तेरा सदड़ा सुनी जय पाई, जे को बह अलाए रहाओ। जैसा बीजें सो लुणे, जो खट्टे सो खाए, अग्गे पुछ न होवई जे सण निशाने जाए। तैसो जैसा कांडिये, जैसी कार कमाए, जो दम चित न आवई सो दम बिरथा जाए। ए तन वेची बै करी, जे को ले विकाए, नानक काम ना आवई जित तन नाही सच्चा नाओ। ए मुबारक शब्द सूही राग अंदर तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का उचारण किया होया है। तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंग 730 ते सवायमान है। इस शब्द की जो रहाओ की पंक्ति है, जो मूल भाव है इस शब्द का, इस विच गुरु साहब बख्शिश करते हैं कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु अगे एक अरदास है कि हे परमा

मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। इस शब्द दा गायन कीता सी बीबी आशुप्रीत कौर ते उन्हां दे जत्थे ने।

निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जहां कहां तहां परपूर शब्द दीपक दीपायो।

0: जप तप सत संतोख प्रख दर्शन गुर सिखे शरण परे ते उबरे छोड़ जंपर के लिखे पौत पाए परपूर हृदय उचरे करतारे गुर गौहर दरियाओ पलक डुबनते तारे नानक कुल निमल अवतरियो गुण करतारे उचरे गुर अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र पर हर परे।
1: चित चितमो अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं सर चिंतु जपात सात संगत हो तकूं तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पर जो फरमावे सो कहूं गुर अमरदास कारण करना।

0: गुर ज्ञान और ध्यान तत् स्यों तत् मिलावै सच सच जानिए एक चित्ते लिवलावै काम क्रोध वस करै पवन उड़न तना तावै निरंकार कै वसै देश हुकम बुझ विचार पावै कल मैं रूप करता पुरख सो जाने जिन किच कियो गुर मिलियो सोए पिखा कह सैज रंग दर्शन दियो रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे सन्यासी तपसिए मुखो है पंडित मिठे बरस एक हो फिरियो किन्हा परचो लायो कहत्या कहती सुनी रैत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजा लगे तिन के गुनों क्या कहो गुरुदेव मिलायो पिखिया जीव तू रखे तेव रहो जीव तू रखे तेव रहो
1: पैर समाध सनह ज्ञान है आसन चढ़ो धर्म तनख कर गयो भगत शीला सर लड़ो पै निरपो हर टल मन शब्द गुर ने जागड़ो काम क्रोध लोभ मोहपत पंच दूत बिखंडो भलो पुहार ते जो तना निरपत नाथ नानक बर गुर अमरदास सच सल पन तै दल जितो एव युद्ध कर
2: कनहर बूंद बसोर मावल कुसुम बसंत गणंत नावै रव संस्किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै कबजन भल उन्हें जो गावै भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै।

हर हर संत मिलहो मेरे भाई, हर नाम दृढ़ावहो एक किनका। हर हर सिगार बनावहो हर जन, हर कापड़ पहरहो खिमका। ऐसा सिगार मेरे प्रभु पावे, हर लागे प्यारा प्रेम का। हर हर नाम बोलहो दिन राती, सब किलबिख काट एक पल का। हर हर दयाल होवे जिस ऊपर,

हर हर नाम बोलहो दिन राती, सब किलबिख काटे एक पलका। हर हर दयाल होवे जिस ऊपर, सो गुरमुख हर जाप जिनका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। पढ़ना गुड़ना संसार की कार है, अंदर तृष्णा विकार। हो मैं विच सब पढ़ थके, दूजे पाए खुआर। राग सूरत दीवार पौड़ी 21वीं श्लोकां नाल। विश्वे चस्या घड़िया पहरा, थिती वारी माहो होआ। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। फिरत फिरत प्रवाया परया तो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती ला।

आषाढ़त पंदा तिस लगै, हर नाहो ना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाहो ना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस।

जनको साधु पेटी सो दरगह होए खलास। कर कृपा प्रभु आपणी तेरे दर्शन होए प्यास।

आषाढ़ सुहंदा तिस लगा, जिस मन हर चरण निवास। प्रभ तुझ बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगा, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आषाढ़ तपंदा तिस लगा, हर नाहो ना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस।

अनंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां सब

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दसै हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद न सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नाव निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत। श्री

0: भयंकर ब्राह्मण पुरहना दोना पे आवे ओई साथ कुड़ी रास कुड़ावा पर कुड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हथ छुरी जगत कसाई मथे टिका तेड़ धोती कखाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मनीष धान ले पूजे प्राण अपा क्या गा कुठा बकरा खाना चौक के ऊपर किसे ना जाना देख चौका कड़ी का और ऊपर आए बैठे कूड़िया
1: मत पिटे वे मत पिटे वन साडा पिटे तन पिटे फेड़ करें।